0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: You do it. Puspa, one version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

लक्ष्मी बीरबाई की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय।

हरे भगवान श्री नरेंद्र महाप्रभु जी की जय। श्री अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव श्री देवपुरी जी महादेव की जय।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय, श्री देवपुरी समादेव की जय, श्री रेवत सिंह जी की जय।

हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी यो यो ओ महाप्रभु जी देव फॉर यू वेरी गुड ओके नारायण।

0: श्रीकृष्ण नारायण भगवान। चिंता कभी, व्हाट हैपेंस विल हैपन,
1: जो सा मा स्टेट सा स्टेने,
0: एंड व्हाट विल नॉट हैपन विल नॉट, दैट्स इट।
1: तक तो है, अतः आत्मा अनुभूति,
0: आत्मचिंतन,
1: हाँ।

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्व गुरु महामान्य स्वामी
1: गुरुदेव की जय।

की आराध्य भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: भगवाने की अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।